0: इति श्री सर्व गुरु गुरु छात्रेण श्रीनिवासेन कृतम् नन्दिदेव स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।
1: தெய்வீக ராகத்தில் அடுத்து டி எம் சௌந்தரராஜன் பாடியுள்ள பாடல்।